0: Mamata Banerjee, she is absolutely firm and that they will win in the elections. Polling in two phases on the 23rd of April and 29, and on the 29th across all 294 seats saw Mamata Banerjee's Trinamool Congress fighting to retain power against a resurgent BJP led by Shuvendu Odhikari. What's going to happen? That's the big story. Meanwhile, in Falta in South 24 Parganas, the Election Commission's inquiry has been concluded. NDTV's access, the Election Commission report on poll irregularities. As per the report, deliberate electronic voting machine obstruction was carried out, and also available footage has revealed multiple violations, including companion voting abuse, unauthorized people entering voting compartments, and multiple individuals voting together, breaching secrecy norms. The Election Commission has ordered a repoll that will take place on the 21st of this month. The Trinamool Congress has fiercely denied this. The Trinamool Congress MP from Diamond Harbour, Abhishek Banerjee, has slammed the decision of the Election Commission to conduct repolling. Meanwhile, people in the area have alleged intimidation and threats by the Trinamool Congress cadres. NDTV has accessed this Election Commission report on poll irregularities in Falta.
1: Bharat किसी एक का तो नहीं है, सबका है। भारत में किसी भी प्रांत से कोई भी यहाँ पे काम के लिए आ सकता है, नौकरी के लिए आ सकता है। अब दिल्ली में IIT है, उसका डायरेक्टर बंगाली है, तो वहाँ के लोग अगर बोलना शुरू कर देंगे दिल्ली के IIT में डायरेक्टर क्यों बंगाली रहेगा। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें बंगाली बैठे हुए हैं, तो जहाँ पे पूरा भारत एक है, यहाँ पे गुजराती बंगाली सब मिलके रहते हैं। भवानीपुर में भी गुजराती रहते हैं, सालों से रहते हैं, 50 सालों से, दो जनरेशन हो गए, तीन जनरेशन हो गए, ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बाहर वाला अंदर वाला करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर इतिहास खंगालने जाएंगे तो ममता बनर्जी भी बाहर वाली हो जाएगी।
2: देखिए, ये लोग तो सिक्योर्ड है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता सिक्योर्ड नहीं रहेंगे। तृणमूल का भीतर ही इतना अंदरूनी लड़ाई है पैसा लेकर के, जी अगर सरकार बदलने का साथ साथ ही तृणमूल को मारना चालू करेगा, इसको रोकना पड़ेगा। पिछले 3 साल में पश्चिम बंगाल में जितना पॉलिटिकल मर्डर हुआ उसमें 95% तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और जो विक्टिम का परिवार है उसका कहना है हम लोग CBI का जांच चाहते हैं, पुलिस का ऊपर CID के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। कारण यह है जो सभी लोगों का कहना ही है, जिसमें कोई विपक्ष का रोल नहीं है, तृणमूल ही तृणमूल को मारा। लेकिन नया सरकार को आने दीजिए, वो सरकार संभाल लेगा।
3: फलता TMC राज में कभी सही वोटिंग नहीं होता है, वो जितने हिंदू गांव है वो डरा के वोट से वो विरत रखते, हमेशा वोटिंग करने के हक ही नहीं, वोटिंग करे तो TMC का ही देना पड़ेगा।
4: कैमरा फोन ग्रैब मोटोरोला सिग्नेचर टुडे।

0: 2024 में बहुत बातें की गई थी कि कुछ दरारें हैं, आपकी सीट चेंज कर दी गई थी, अब आप वापस अपने गढ़ में वापस आ चुके हैं, खड़गपुर सदर से आप लड़ रहे हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया है जो पहले कुछ भी मतभेद थे?
1: पूरा हिंदुस्तान के बीजेपी एक है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और बंगाल में तो चीफ मिनिस्टर की सीट भी चेंज हो जाती थी, 21 में उन्होंने नंदीग्राम आ गए, हार गई, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, पॉलिटिकल पार्टियां अपना स्ट्रेटेजी बदलती है परिस्थिति के अनुसार, और हम एक कर्मी कार्यकर्ता के नाते उसके साथ ही चलते हैं।
0: बोरिया माजुमदार सवाल पूछेंगे दिलीप दा।
2: दिलीप बाबू, जेटा वी ऑलवेज सीन दैट बीजेपी हैज बीन कंस्ट्रूड एज अ पार्टी ऑफ आउटसाइडर्स, সেই ন্যারেটিভটা কি এবার পাল্টে গেছে? হ্যাজ দ্যাট ন্যারেটিভ চেঞ্জড দ্যাট দ্য বেঙ্গলিজ আর নাও ফাইন্ডিং ইট মোর অ্যাকসেপ্টেবল টু ভোট ফর দ্য বিজেপি ইউ থিংক?
1: जो लोग हमको बाहरी बोलते थे, जनता इस बार उनको बाहर कर देगा। जनता, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे, और उस समय विभाजन के समय उन्होंने पाकिस्तान को तोड़ करके पश्चिम बंगाल बनाए थे हिंदू बंगाली होमलैंड के लिए। जनता बीजेपी को जीतना चाहती है, लेकिन पिछले 50 साल से यहाँ वोटिंग नहीं हुआ ठीक से, जनता को वोट देना नहीं दे गया है। कल देख रहे थे, कल परसों फलता डाउन हो क्या हो रहा है, महिलाएं आके क्या बोल रही हैं, उनको वोटिंग करना नहीं देते हैं, पहले दिन उससे वोटर कार्ड छीन लिया जाता है, घर घर धमकी दिया जाता है, एक विधानसभा में रिपोलिंग हो रही है। इसीलिए जो वास्तव स्थिति है यहाँ के लोगों की, मन की जो इच्छा हो प्रतिफलित नहीं हो रही थी, इस बार वो हो जाएगा।
0: एनडीटीवी इंडिया के मेरे सहयोगी हैं सैयद सोहेल, आपसे सवाल पूछेंगे। सैयद,
3: इस बार का चुनाव बहुत व्यवस्थित रहा है, जिस तरह की तैयारियां चुनाव,
0: सैयद सोहेल,
3: हिंसा की घटनाएं भी इस बार बहुत कम हुई है, नतीजा जो भी हो, अगर ममता बनर्जी,
0: व्हाट्स एट स्टेक फ्रॉम योर लेंस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, इफ द बीजेपी डजंट विन? बिकॉज सवाल यह है कि क्या यह क्रिटिकल इलेक्शन है 2011 जैसे, जहां पे तृणमूल जीती थी, या फिर आपको लगता है कि एक चुनाव और लग सकता है बंगाल के लोगों को यह देखने में कि क्या बीजेपी बंगाली हो चुकी है? इज इट एडिक्वेटली बंगाली इनफ टू बी ट्रस्टेड टू बी इन पावर? इज इट दिस इलेक्शन और कुड इट बी द नेक्स्ट? दिलीप घोष,
1: देखिए 2019 में हमको 18 लोकसभा सीट मिली थी, 2021 में हमको 77 सीट मिली, और सारे विरोधियों को सफाई करके हम विरोधी के नाते आए, और लोगों ने हमको जगह दिया था देखने के लिए। हमने 5 साल संघर्ष किया हिंसा के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विधानसभा के अंदर बाहर। लोग अब सारा देश में, 21 राज्यों में भाजपा है, केंद्र में माननीय मोदी जी को 3 बार लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, अब बंगाल की जनता तैयार है भाजपा का सिरमौर और मुकुट पहनाने के लिए, सत्ता में लाने के लिए उसकी तैयारी हो चुकी है।
0: Big stories coming in right now. Humayun Kabir is trailing in one of the 2 seats that he is contesting from. Mamata Banerjee, in the early trends that we have, is trailing in Bhavanipur as well. And the big... All right, Jay wants to...
4: Jayantada Ghoshal has a question for Dilip Ghosh. Jayantada. Dilip, can you hear me?
0: I mean, yes, he can. Please go on.
4: বলছি যে আপনি ক্যাবিনেটে আসবেন তো যদি বিজেপি পাওয়ারে আসে?
1: ভাই পার্টি হমকো কহাঁ কহাঁ ভেজ রা, হম কভি না নেই বোলা, পার্লামেন্ট মে ভেজ দিয়া, অ্যাসেম্বলি মে ভেজ দিয়া, বর্ধমান মে ভেজ দিয়া, আপ পার্টি কা কার্যকর্তা হুঁ, পার্টি জো বোলেগা বোলে।
4: লেকিন লেকিন ইস বার তো, ইস বার তো শুভেন্দু কে নমিনেশন মে আপ গয়ে অর ফোটো অপরচুনিটি হুয়া আলিঙ্গন কা, तो अभी तो मुझे लगता है ट्रूस हो गया है आपके साथ।
1: नहीं, उन्होंने भी मेरे नॉमिनेशन में आए थे, पार्टी का ही निर्णय रहता है, हम उसको मान के चलते हैं।
0: कंचन गुप्ता हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। कंचन दा, आई जस्ट वन सेकंड। कंचन दा,
5: दिलीप बाबू, डू यू थिंक इट विल बी अ वेरी क्लोज फिनिश और विल द मार्जिन बी वेरी क्लियर?
0: He had to run away. Somebody called him and frantically took him away, trying to get a guest in the middle of live counting is a little difficult.
5: But just let me also add over here, the Bengali channels are reporting in a different manner.
0: What are they reporting?
5: And, you know, it's still a very close fight, but they are giving advantage to the BJP as of now.
0: And a few very interesting scenes that are coming in. Humayun Kabir is trailing in Nauda. Udayan Guha is trailing in Dinhata. Mausam Noor of the Congress is trailing in Maltipur. And the BJP, some of the big guns right now, Shubhendu Adhikari is leading in Bhavanipur.
5: And the left is nowhere.
6: Because this is important. Adi Rajaram, the AIADMK's challenger to Udayanidhi Stalin at Chepauk Tiruvallikanni, at the moment he's leading.
0: Yeah.
6: All right. So that's a seat that will also be closely watched.
7: Veera, the logical question there is, did the TVK eat into

0: मजाक किया, आपके खुद के क्षेत्र में तो पूरा क्लीन स्वीप हुआ है, ट्राइबल वोट बहुत पड़ा है आपको, इस बार आपने जंगल महल में भी स्वीप किया, नॉर्थ में भी स्वीप किया, थोड़ा सा
1: मीटरिंग होती है सर वो बंद हो गई है।
0: डायमंड हार्बर मॉडल अभी भी कायम है, एक ही सीट वहां पर अभी बढ़त दिख रही है, उसमें थोड़ा सेंधमारी की कोशिश अभी भी है।
2: हाँ वहाँ थोड़ा तो वो लोग डराने का काम किया और वहाँ डेमोग्राफी ज्यादा चेंज हुआ था, इसलिए जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुआ वहाँ इस तरीके से हुआ है। आने वाला दिन में सब ठीक ठाक हो जाएगा, हमारी तो 189 चल रहा है, ये बड़ा अंतर, बाकी हम लोग संभाल लेगा।
3: शुभेंदु दा आपने वहां पे भी अच्छा किया जहाँ पे बंगाली भद्र लोग थे और लोगों को लग रहा था कि इन एरियाज में आ ही नहीं सकती, कोलकाता के इर्द गिर्द एक बंगाली भद्र लोग जो मान नहीं रहा था बीजेपी जीतेगी, बोरिया मजुमदार हमारे साथ है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस
4: শুভেন্দু বাবু, প্রথমত কংগ্রেচুলেশনস, দুটো প্রশ্ন।
5: ভালো,
4: হ্যাঁ আপনাকেও দুটো প্রশ্ন। এক, আগেরবারের ইলেকশনের পরে আমরা প্রচুর গন্ডগোল দেখেছি, কলকাতায় 200 বছরের বাস উত্তর কলকাতা, এটা কিভাবে কিভাবে সাধারণ মানুষকে আপনার মুখ থেকে শুনলে সবাই বলবেন, এটা কিভাবে আটকাবেন? দ্বিতীয়ত,
2: বিজেপি বা আমাদের সনাতনী রাষ্ট্রবাদীদের কালচার এগুলো নয়, আটকানো মানে এখানে হবে না, কিছু হবে না, ওই ধরনের ভায়োলেন্ট করতে পারে জামাতি মাইন্ডসেটের লোকজন, আমরা যারা রাষ্ট্রভক্ত লোকজন আছি এবং সনাতন কালচার মানি, গীতাকে মানি, আমরা এই সব কালচারে নেই, আমরা যেটুকু যদি ছোটখাটো কিছু ঘটে আমি এবং আমার প্রদেশ অধ্যক্ষ সভাপতি আমরা দুজন সামলে নেব।
4: দ্বিতীয়ত আমরা যেটা There was polarization of a certain sort, and even the Hindus were feeling that very inside Calcutta. Take Raja Bazar, take Metia Bruj, both north and south. You are talking about consolidation. Was that one of the reasons, and did TMC not see the writing on the wall?
2: Due to their vote bank politics, TMC did this type of unethical job. It's a high appeasement politics. Due to this ground, the demography has been changed in Calcutta surrounding area. The all are infiltrators. They are coming through border. The Mamata Banerjee government not provided land to the BSF. This is the main reason. For the reason, the entire Bengali Hindu and all other two patriotic people, they are united, they are casted their vote in favor of Lotus and the outcome is now coming.
3: जाने माने journalist editor हैं वीर सांगवी, वो एक quickly आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। Yes वीर, शुभेंदु दादा।
6: शुभेंदु बाबू, just a basic question, what will you do apart from this Hindu Muslim stuff which you've gone on and on about, what will you do in Bengal that will be very different?
2: Please tell me again.
6: You've talked about Hindu consolidation, people's concerns about infiltration, which is valid and probably accounts to your victory. But my question is, once you get away from that, once you come to power in Bengal, what will you do that is different?
2: No. You saw in Assam, Tripura, after BJP came to the power, the infiltrators issue already overcome. The double engine sarkar will perform properly and central state relation will sort out this problem.
3: सवाल दिए शिव अरूर, हमारे मैनेजिंग एडिटर है एनडीटीवी 24/7 के। शुभेंदु दा, जाने से पहले एक सवाल शिव अरूर आपसे करना चाहते हैं। शिव,
7: शुभेंदु दा, दिस एंटायर इलेक्शन, प्रीवियस इलेक्शन ऑल्सो वॉज फ्रेम्ड एज, you know, the BJP is a party of the Hindi heartland, Bengali identity samajhte nahi hai BJP wale. Do you think that has been disproved now? Outsider insider wala politics?
2: Yes, outsider insider, it's a Mamata Banerjee's very cheap politics. The people rejected it. You know it very well, one Bengali Hindu, renowned, respected Hindu, Bharat Kesari Dr. Shyama Prasad Mukherjee,

0: form this party. This party is functioning under the ideology of the Dr. Shyama Prasad Mukherjee. The people rejected it. It's a Mamata Banerjee, very cheap politics.
1: Shubhendu, one final question. At this moment in Bhavanipur, it's been going up and down. Mamata Banerjee is currently in the lead. Previously, she was trailing. How is it looking for you in Bhavanipur? You are still known as a giant slayer from Nandigram in the last time.
0: I am hopeful because the Muslim area 77 ward already covered. My calculation inside was that she may lead 20,000, but now she is leading 16,000. The entire ममता वोट बैंक एरिया आज नाव कवर।
2: ये पश्चिम बंगाल के दो जाने पहचाने जर्नलिस्ट हैं, वो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। खत्म करने से पहले जयंतो घोषाल आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं।
3: शुभेंदु कंग्रेचुलेशन जयंतो बोलची। একটা প্রশ্ন করবো, তুমি কি আর ইউ লাইক টু শিফট ইউর অফিস টু এগেইন রাইটার্স বিল্ডিং অর ইউ উইল গো টু নবান্ন? মেজর ডিসিশন এটা।
0: We are working in collective leadership. It's a national party. We will sit and discuss all the...
3: Writers Act, a heritage building.
0: No. I am not bringing any regional party or personal party.
3: Right.
2: Achha,
3: right.
2: Mahua Chadi ji, aapko congratulate karna chah rahi hai. Mahua.
4: কনগ্রাচুলেশন শুভেন্দু বাবু, আপনাকে একটাই প্রশ্ন করছি, অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছে। আই উড লাইক টু আস্ক ইউ দ্যাট সিন্স ইউ নো ইউ ওয়ার দ্য ওয়ান হু ডিফিটেড মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রাম লাস্ট টাইম, অ্যান্ড ইফ দ্য ফাইনাল রেজাল্টস ইন ভবানীপুর আর সাচ দ্যাট ইউ ডিফিট হার ইন ভবানীপুর, ইউ শুড বি দ্য আনডাউটেড লিডার অ্যান্ড দ্য চিফ মিনিস্টেরিয়াল ক্যান্ডিডেট?
0: No, I am not passing this sensitive question. BJP is collective leadership under the great leadership of Narendra Modi. We fought this election and results are coming. No problem.
2: Achha, Shubhiman, Kishloy, aapse puchna jaate hain. Kishloy.
0: With the consultation of the elected MLA.
4: Shubhendu. Thank you.
2: Shubhendu. One last question.
5: Joda English kabe asche?
0: Thank you.
5: Joda English kabe?
2: पूछने के लिए आप जाइए मत, एक मिनट रुकिए, वो काफी देर से आपके कैंपेन को ट्रैक कर रही है, भागते हुए आ रही है हमारे हिंदी स्टूडियो से, दौड़ते हुए आ रही है, मुझे भी बात करनी है मनोज्ञा लोहिवाल, शुभेंदु अधिकारी।
4: दादा नमस्कार,
2: गिरा मत देना मेरे लैपटॉप को, गो ऑन।
4: কালকে বলেছিলেন 190 প্লাস হবে।
6: আচ্ছা, আপকো মে আপকা রাহুল এক বড়ি
2: গো অন।
6: কাল হামারি জো বাত হুই থি তো আপনে কাহা থা কি জো আঁকড়ে হ্যায় ওয়াহি রহেঙ্গে। क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ शुभेंदु?
2: वो नहीं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, और कुछ
6: नहीं
2: पूछो।
6: दे रहे, और कुछ पूछो तो मुझे ये बताइए आज की खावें झालमुड़ी ना माचर झोल?
2: हाउ विल यू सेलिब्रेट?
0: ऑल झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
6: ओ बाबा,
2: ये थोड़ा रसगुल्ला हमको भी भेज देना आफ्टर विनिंग इन दिस फैशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
0: चलिए नाउ काउंटिंग इज गोइंग।
6: खाली एक आखिरी सवाल, शिशिर बाबू से बात हुई, उन्होंने क्या बोला? शिशिर बाबू इज हिज फादर।
0: नो, माय फादर इज ऑलवेज ब्लेस्ड मी।
6: ठीक है, ऑल द बेस्ट दादा, शाम को फिर बात होगी।
2: थैंक यू वेरी मच एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। शुभेंदु अधिकारी जॉइनिंग अस देयर लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन एनडीटीवी शिव। This is probably the first time I've done a live quite of this kind, but I'm glad it worked out.
3: That's a seen something like this.
2: Yeah.
3: Well,
2: I'm glad it worked out.
7: The great thing is that he's finally looking happy and relaxed through this entire campaign. Wherever he went, you had the Trinamool Congress cadre shouting Jai Bangla, Chor Chor at him, and you always saw him very aggressive, very angry.
3: Shubhendu da when he's cheerful.
7: Yeah, this was him relaxed. So you should have seen the campaign.
2: What did you make, Veer, of that conversation and the posturing from potentially the next chief minister of West Bengal?
8: Being careful because others have suffered for sort of displaying ambition, so he's rightfully justifiably careful.
3: He was being very careful. He didn't want to outline a plan of action or whatever, because given the BJP, they may produce somebody you've never heard of and make him chief minister.
2: No, but

0: He's been one of the key people delivering and working on the ground in West Bengal. He joins us now. Dharmender ji, bahut bahut swagat. Chha gaye aap.
1: Unko sare sare diya jate sare vishay jo bhi Bengal mein kaam kar raha usko dhyan mein aa gaya tha. Bengal bahut badi parivartan ki or badh rahi hai.
0: Ye meri colleague hai Manogya Loiwal. Bahut waqt tak aapka campaign cover kar rahi thi, aapse sawal karna chahti. Manogya.
2: Namaste dada. Aaj Jai Jagannath kahenge ki Jai Maa Kali. Mera to sabse pehla sawal yahi hai.
1: Jai Jagannath, Jai Maa Kali, dono hi kahunga.
2: मिदनापुर में, नंदीग्राम में आपने बहुत कैंपेन किया, 2021 में भी आपकी बड़ी भूमिका थी और इस बार भी. तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? इज इट द क्रेडिट गोज टू यू फॉर मॉनिटरिंग इट कंप्लीटली अगेन इन नंदीग्राम दिस टाइम?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप जानते हो सारी क्रेडिट बंगाल की जनता की है, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की है और हमारी सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बंगाल की जनता की, देश की जनता की भरोसा ही इस नतीजा का परिणाम है.
2: व्हाट इज चीफ मिनिस्टर, व्हाट इज धर्मेंद्र प्रधान्स मैसेज टू चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी टुडे?
1: अहंकार की पराजय हुई, कुशासन की पराजय हुई, महिलाओं की साफ उन पर लग गई, गरीबों की, युवाओं की, किसानों की साफ उनके ऊपर लग गई.
0: ये मेरी कोलीग हैं पद्मजा जोशी, वो आपसे सवाल करना चाहती हैं.
3: धर्मेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस.
1: आपके
3: एक एक धारणा थी कि एक अभेद्य किला है तृणमूल कांग्रेस का, वो तो आप उसके पार हो ही नहीं सकते. सबसे ज्यादा आपकी जो लीड्स आई हैं वो आई हैं मालदा मुर्शिदाबाद वाले एरिया में, साउथ 24 परगनास में. और आयरॉनिकली जिस डायमंड हार्बर मॉडल की बात की जा रही थी, दैट आई चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया टू ट्राई एंड टेक ऑन द डायमंड हार्बर मॉडल, उस डायमंड हार्बर की सीट पर अभी तक बीजेपी लीड कर रही है. क्या लगता है आपको इस पूरे उसका संदेश क्या है? और मोर स्पेसिफिकली जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में बीजेपी को लीड कैसे मिली, क्या आपने वोट स्प्लिट किया?
1: पद्मजा जी, रावण की भी अहंकार नहीं रही थी, ये तो सामान्य मनुष्य थे, ये खुद को भगवान मान बैठे थे, खुद को महान मान बैठे थे. बंगाल की जनता ने चुन चुन के, ये तो रिगिंग से वोट जीतते थे, भय दिखा के वोट जीतते थे, निष्पक्षता नहीं होती थी. मैं भारत की चुनाव आयोग को कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम करता हूं, उन्होंने जिस ढंग से निष्पक्ष चुनाव करवाया इसी के नतीजा है.
3: धर्मेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्योंकि हमने जब हम जब पानीहाटी एरिया में गए थे, हिंगालगंज जैसे में गए थे वहां पर, और कोलकाता में भी, जब आरजी कौर का नाम सुन के कुछ महिलाएं जस्ट स्पॉन्टेनियसली जिस तरीके का उनका रिएक्शन होता था, आप आज प्रदेश की महिलाओं को खासतौर पर क्या कहेंगे? जो
1: ये मातृशक्ति की, ये मातृशक्ति की विजय है. बंगाल की महिला माँ साक्षात दुर्गा के रूप में, काली के रूप में अन्याय अत्याचार को सहार किया है. ये विजय बंगाल की जनता की, विशेष करके मातृशक्ति की है.
0: एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं शिव अरूर, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं. शिव.
4: धर्मेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू, आई एम शिव अरूर. आई वांट टू एड टू पद्मजा'स क्वेश्चन ऑन द महिला वोट, बिकॉज द तृणमूल हैड ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, दे वर वेरी डिसमिसिव ऑफ द बीजेपीज अपील एज फार एज द महिला वोट इन बंगाल इज कंसर्न्ड. हाउ डिड इट हैपन? हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस वोट?
1: Because Trinamool has created a huge crisis of confidence on their leadership. The way they reacted during the Arjikar incident, during the Sandeshkhal incident, during the Durgapur incident, in all part of Bengal, they have a huge atrocity on women. Women were at the receiving end. They thought this is their monopoly, they can do anything, they can get away. But especially women of Bengal, they are very conscious. There is a great history of Bengal's socio-political movement. They have rejected, they have taught a lesson to this autocrat people, the ahankari people.
0: Ye Kanchan Gupta aapse sawal karna chahte hain. Kanchan da.
5: Dharmendra ji, namaste. This the scheduled tribe vote has just been swept by the BJP. What do you attribute it to? Across the state, it's the same thing.
1: Panchanda, you are a great observer, you are a part of the Bengal political culture, you know everything, not only tribal, not only women, not only Matuas, not only Bhadralogs, all segment of Bengal has stood rock solid with Prime Minister Modi's leadership. This is the primary analysis of the thing, later all part of result come out, from hill to Ganga Sagar, Darjeeling ki choti se leke Ganga Sagar tak, sabhi ilaka mein. उड़ीसा की सीमा से लेके बसरीहाट तक सभी इलाका में, मालदा मुर्शिदाबाद तक सभी इलाके में, बंगाल

0: भाभा जहाँ आपको देख रहे थे, रविंद्र संगीत तो आपको हमेशा बोल रहे थे कि मैथिली दीदी सुनाइए, पहले बिहार अब बंगाल।
1: Of course, today I have joined as a politician, not as a singer, but definitely जो मैंने वहाँ पे एक गीत बहुत सुना और गा करके सुनाया लोगों को, तो वो मैं आपको दो लाइन सुनाऊंगी और it really touched me, लोगों के साथ बहुत ज्यादा resonate कर पा रही थी मैं जब ये गीत सुना रही थी।

0: ওই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
1: Absolutely beautiful. Maithili, you know, we are all watching how the result in Bengal, where you campaigned so much, is unfolding right now. And thank you for that beautiful song. Are you surprised as a young woman, as you travel through Bengal, are you surprised by the scale of this result as it stands right now? You spoke to women, you interacted with the people of Bengal. Are you surprised by what you're seeing?
0: ऑफकोर्स हमने जितनी उम्मीद की थी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं जहाँ जहाँ मुझे याद भी नहीं है मैं कहाँ कहाँ गई हूँ चुनाव प्रचार के लिए, इतने सारे जगह हम लोग गए, 35 से 40 जगह मैं जब गई तो मुझे हर जगह जाके लग रहा था कि नहीं, यहाँ के लोग ऑलरेडी मन बना चुके हैं, इनको ज्यादा मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो देयर वाज समथिंग। और जब मैं उधर कैंपेन करने से पहले का मैंने माहौल देखा था, मैं कहीं भी जाते हैं तो उस जगह के बारे में हम स्टडी करते हैं कि वहां पे अभी कैंपेन किस तरीके से कर रहे हैं, जो वहां के सत्ताधारी हैं वो क्या बातें बोल रहे हैं। तो मैंने 100 एमपी जो वहां पे बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ज्यादा अच्छे से प्रचार करिए, तो कहीं ना कहीं कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस मुझे लगता है आज नहीं तो कल बंगाल में फेस करना पड़ता लोगों को। और वहां के लोग इतने अवेयर हैं कि उन्हें मालूम है भारत में हैं आप तो भारत के ही विरोध के चीजें आप कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट के चक्कर में आप दूसरी जो इस्लामिक जो वैल्यूज है उसको प्रमोट कर रहे हैं आप स्टेज पे आकर के। तो कहीं ना कहीं लोग बहुत इतने बुद्धू नहीं है, लोग जानते हैं कि किस तरीके से अब
1: इस कैंपेन में, जैसे आपने देखा होगा कि द तृणमूल प्रोजेक्टेड द बीजेपी एज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बंगाली कल्चर। दे सेड दैट द बीजेपी आर आउटसाइडर्स, दे आर फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड। यू आर अ रिप्रेजेंटेटिव एज वेल नाउ फ्रॉम द बीजेपी, फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड। व्हाट डू यू से टू द तृणमूल, बिकॉज दे सेड दैट द बीजेपी इज इनकेपेबल ऑफ कल्चरली अंडरस्टैंडिंग बंगाल।
0: Of course, I was asked a question there. एक वहाँ की रिपोर्टर ने पूछा कि यहाँ पे दीदी बोल रही है कि बीजेपी आ जाएंगे तो यहाँ पे मछली बंद हो जाएगा। तो मुझे हिट किया कि अच्छा, इस तरीके की भी बातें बोली जा रही है लोगों को बहलाने के लिए। खुद मैं कंठी पहनती हूँ, तुलसी पहनती हूँ, मैं तो नहीं खाती, लेकिन मैंने कहा कि मिथिला में तो माछ खाना ट्रेडिशन ही है, और ये सारी बातें अगर यूज कर रहे हैं तो मतलब स्वे वोटर्स, तो ये बहुत अलग ही लेवल का उधर चल रहा था। हर एक छोटी छोटी बात पे राजनीति हो रही थी। तो लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, लोग जान रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्न स्टेट है वो कितना डेवलप किया, और वही डेवलपमेंट उनको बंगाल में चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूथ खास करके और महिलाएं, इन्होंने बहुत मेजर रोल इस बार निभाया है।
2: यू नो, वी सी दीस फायर क्रैकर्स गोइंग ऑफ आउटसाइड द बीजेपी ऑफिस इन कोलकाता एंड सॉल्ट लेक। बट मैथिली, यू नो, सिंस यू स्पोक ऑफ द यूथ एंड वुमेन specifically, I will request you to sing. You also referred to Shayani Ghosh, I think, the speeches that she gave from stage without naming her. So when I'd spoken to you earlier, you had said that in this place, from Bihar to Bengal, there are cultural similarities, and you had a Ram Dhun to sing in response. For everyone watching you today, even as we see the results pouring in, would you like to sing a few of those lines? Because I think that is something everyone who watched you on our channel really connected with.
0: और जो माहौल मैं देख रही हूँ आपकी टीवी स्क्रीन पर, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए सुना रही हूँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सब

0: want to publicly voice their opinions. Many are today coming across to your cameras, to your journalists, to speak about what they underwent. So it would be unfair for me to give my opinion to a cephologist of repute, and especially since cephology is not an art that I practice.
1: Okay, we leave it there. Smriti ji, thank you for joining us, and many congratulations on the BJP's victory in West Bengal. I want to go across to Pradeep Gupta. He joins us now. Pradeep ji, aap pehle itna apna hi celebrate kar rahe the कि आप तक ऑडियो ही नहीं पहुंचा था. हमारे यहाँ पे सारे जो स्टूडियो में लोग अपने वो विसल्स के साथ तैयार थे, वो सोच रहे थे कि गिवन हाउ मच यू नो ऑफ अ बैड नेम पोलस्टर्स हैव गॉट अ पीपल क्वेश्चन, कैन वी हैव द विसल्स आउट प्लीज. आई थिंक ही डिजर्व्स दिस वीरा शिव, बिकॉज देयर सो मच यू नो एज इफ दीज नंबर्स आर बीइंग कंजर्ड आउट ऑफ थिन एयर. इट्स नॉट. टू गेट टीवी के राइट in a state like Tamil Nadu really proves that there's effort on the ground. You may sometimes get it wrong, but there is effort on the ground.
2: This was getting it right. Getting this one right was extraordinary, primarily because of this, that it's an untested force, it's a new one, he's got to go by his data, and he went by seat by seat. It's not just this, Rahul, let me add, he got this right as well. He said Chennai, there is a sweep, even the top big guns of the okay. DMK are failing.
1: So whistles out, we whistle for him once and then we ask him all kinds of questions, okay? One, two, this is for you, Pradeep Gupta, and for getting TVK right in Tamil. This is not for any politician, for anybody says we are...
2: I know.
1: Yeah, yeah, this is just for Pradeep Gupta and getting it right and doing... Okay, one, two, here. Pradeep ji, aapke liye CT baj rahi hai studio mein, chha gaye aap to.
3: स्टूडियो में छा क्या गए राजदीप. राहुल वापस मैं कहूंगा कि ये जो जीत है एक्सेस माई इंडिया की टीम ग्राउंड में, पीछे बैक ऑफिस में, और सबसे बड़ी बात है साइंस की जीत है. मैं वापस कहूंगा, बार बार कहूंगा कि साइंस की जीत है. कि आप ये देखिए, चारों के चारों स्टेट में, चारों के चारों स्टेट में एक्सेस माई इंडिया का प्रेडिक्शन बिल्कुल स्पॉट ऑन है. स्पॉट ऑन.
2: बंगाल में तो प्रेडिक्शन किया,
3: चाहे वोट शेयर हो चाहे सीट शेयर हो, सारी की सारी चीजें चारों स्टेट में मैचिंग है. और रह गई बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में आपने देखा कि सारी पोलिंग एजेंसीज, एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल पंडित, और सबने, किसी ने ये कहा नहीं था कि टीवीके को 10 से भी ज्यादा सीटें आ जाएंगी. 10 सीटें भी देना टीवी के लिए, टीवी के को कोई देने के लिए तैयार नहीं था. और 10% से 15% वोट शेयर सब लोग कह रहे थे. हमने 35-35% वोट कहा था टीवी के को, बिल्कुल 35% ही वोट आ रहा है. हमारा मिड रेंज, हमारा मिड रेंज जो था, मिड रेंज टीवी के लिए 109 सीटों का था. आप देखिए 109 सीटें ही मिल रही है, 98 से 120. दूसरी जो बात है कि डीएमके अलायंस को हमने कहा था दो नंबर पे, वो बिल्कुल दो नंबर पे ही 32% वोट शेयर के साथ है. सीटों में एक दो सीट से आगे पीछे AIDMK अलायंस है. और तीसरे नंबर पे AIDMK कहा था, वही तीसरे नंबर पे है. मैं कहूंगा इससे अच्छा साइंस का दूसरा कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता डेटा साइंस का, क्योंकि आपके पास हिस्टोरिकल डेटा कोई भी अवेलेबल नहीं है एज फार एज टीवी के गोस. लेकिन उसके बावजूद 35% वोट शेयर, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना, एग्जैक्ट सीट प्रिडिक्ट करना, ये प्योरली हार्डवर्क जो है एक्सेस माई इंडिया की टीम का. और साथ में साइंस, जो हम ग्राउंड के ऊपर एक्सेस माई इंडिया जाना जाता है, जो कि इसके पहले 90% से ज्यादा चुनाव में हमने एक्यूरेसी से के साथ कॉल्ड किया है. इसके पहले 81 चुनाव में 74 इलेक्शंस पे एग्जैक्टली काउंट किया. अब ये हो गया 85 में से 78 इलेक्शंस हमने एक्यूरेटली काउंट किया है. थैंक यू सो मच.
1: आई वांट टू शो आवर व्यूअर्स द एक्सेस माई इंडिया पोल एंड देन कंपेयर दैट विद द नंबर्स ऑन योर स्क्रीन. सो एज दे सेलिब्रेट इन मुंबई एंड विद गुड रीजन, look at the predictions made by Access My India while he sat out of the election in West Bengal. Here is Tamil Nadu. TVK between 98 and 120, that was the prediction. At the moment, they're at 109 seats. So that's bang in the middle of his range.

0: टीएमसी जिस तरीके से गुंडागर्दी करता था, जो भी भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, वो जेल में जाएगा कानून के अंदर। लेकिन जितना 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, इस तरीके से कोई काम हम लोग करने नहीं दूंगा।
1: पोल वायलेंस ना हो उसको कैसे इंश्योर करेंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां रहेंगी सर।
0: हम लोग का कंट्रोल है यार, आप लोग मान के चलिए ना, मैं इसमें कोई कॉमनल बात नहीं बता रहा हूँ, हिंदू लोग एरोगेंट नहीं होता।
1: ये कंचन गुप्ता है, आप जानते हो उनको?
0: कल्चर में एरोगेंसी नहीं है।
1: कंचन गुप्ता आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। शुभेंदु दा, कंचन दा, लेट मी जस्ट ब्रिंग माय लैपटॉप अक्रॉस। शुभेंदु अधिकारी, यस यस।
2: शुभेंदु बाबू
0: नमस्कार। नमस्कार,
2: কেমন আছেন?
0: আমি আছি, আমি গণনা মনিটরিং করছি। আমি এমনি কমফোর্টেবল, গোটা 200 কাছাকাছি সিট যাচ্ছে। আর ভবানীপুরে মুসলিম এলাকা কাউন্ট শেষ হয়ে গেছে, মমতা ব্যানার্জি 11,000 মতো লিড নিয়েছে, এবারে আমি কভার করে নেব, হিন্দু এলাকা বাকি আছে।
2: শুভেন্দু বাবু, আমি দেখনে কো জো মিল রাহা হ্যায় কি जितने भी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पर भाजपा इतना शानदार रिजल्ट कर रहा है। इन साउथ 24 परगनास, जहां पर पार्टी की कोई जगह नहीं थी, आपने वहां पर कब्जा कर लिया है। डायमंड हार्बर में कर लिया है। इसकी कोर रीजन क्या है, कोर कारण क्या है?
0: इसका एक ही रीजन है, घुसपैठिया। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया, उसका खिलाफ ही वोट हुआ।
2: मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, महिलाओं ने किसको वोट दिया इस बार?
0: देखिए, वोट हिंदू माने मेल फीमेल में नहीं हुआ। अब यहाँ हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, हिंदू महिलाओं बीजेपी को वोट किया। साथ में इस बार आदिवासी वोट काफी मिला हम लोग को।
1: ये पद्मजा जोशी हैं, कैंपेन को बड़े जोरों से कवर किया था, वो आपसे सवाल पूछना चाहती है। पद्मजा, आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट लाइव ऑन द फ्लाई। यस पद्मजा, गो फॉर इट। यस
3: सुवेंदु दा,
0: थैंक यू।
3: सब भालो? आई एम वेरी वेल सर, आई एम वेरी वेल। आपने बहुत धुआंधार प्रचार किया, आपके खुद के क्षेत्र में तो पूरा क्लीन स्वीप हुआ है। ट्राइबल वोट बहुत पड़ा है आपको इस बार, आपने जंगल महल में भी स्वीप किया, नॉर्थ में भी स्वीप किया। डायमंड हार्बर मॉडल अभी भी कायम है, एक ही सीट वहां पर अभी बढ़त दिख रही है, उसमें थोड़ा सेंधमारी की कोशिश अभी भी है।
0: हाँ, वहाँ थोड़ा तो वो लोग डराने का काम किया, और वहाँ डेमोग्राफी ज्यादा चेंज हुआ था, इसलिए जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुआ वहाँ इस तरीके से हुआ है। आने वाला दिन में सब ठीक ठाक हो जाएगा। हमारी तो 189 चल रहा है, ये बड़ा अंतर, बाकी हम लोग संभाल लेगा।
1: शुभेंदु दा, आपने वहां पे भी अच्छा किया, जहाँ पे बंगाली भद्र लोग थे और लोगों को लग रहा था कि इन एरियाज में आ ही नहीं सकती, कोलकाता के इर्द गिर्द एक बंगाली भद्र लोग जो मान नहीं रहा था बीजेपी जीतेगी, बोरिया मजुमदार हमारे साथ है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। यस
4: শুভেন্দু বাবু, প্রথমত কংগ্রেচুলেশনস। দুটো প্রশ্ন, ভালো, হ্যাঁ আপনাকেও দুটো প্রশ্ন। এক, আগের বারে ইলেকশনের পরে আমরা প্রচুর গন্ডগোল দেখেছি, কলকাতায় 200 বছরের বাস উত্তর কলকাতা, এটা কিভাবে কিভাবে সাধারণ মানুষকে আপনার মুখ থেকে শুনলে সবাই বলবেন, এটা কিভাবে আটকাবেন? দ্বিতীয়ত,
0: বিজেপি বা আমাদের সনাতনী রাষ্ট্রবাদীদের কালচার এগুলো নয়, আটকানো মানে এখানে হবে না, কিছু হবে না। ওই ধরনের ভায়োলেন্ট করতে পারে জামাতি মাইন্ডসেটের লোকজন, আমরা যারা রাষ্ট্রভক্ত লোকজন আছি এবং সনাতন কালচার মানি, গীতাকে মানি, আমরা এইসব কালচারে নেই। আমরা যেটুকু যদি ছোটখাটো কিছু ঘটে, আমি এবং আমার প্রদেশ অধ্যক্ষ সভাপতি, আমরা দুজন সামলে নেব।
4: দ্বিতীয়ত, আমরা যেটা আমি আমি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করছি, দেয়ার আর পার্টস অফ ক্যালকাটা শুভেন্দু বাবু, ওয়ার উই হ্যাভ কাইন্ড অফ সিন ওভার দ্য লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স, ওয়েন উই অনলি হ্যাভ ট্রাভেলড অ্যাজ বেঙ্গলিজ, we did not feel great about it because a certain community, there were things like, are, you know, rules are not the same for Bengalis, Hindus and Muslims. There was polarization of a certain sort, and even the Hindus were feeling that very inside Calcutta. Take Raja Bazar, take Metia Buruj, both north and south. You are talking about consolidation. Was that one of the reasons, and did TMC not see the writing on the wall?
0: Due to their vote bank politics, TMC did this type of unethical job. इट्स ए

0: I mean, for some reason, counting must have been stalled or they are not coming out, the results.
1: It's even down now. TVK is down to 101.2 now.
0: But there's movement. But in the West Bengal panel, there is no movement for quite some time now. And I'm watching my ECI thing on the phone here. Same thing. It's been static.
1: ECI will be even slower.
0: Static for a while. But there might be something since we are not there on the spot. But she's also
2: something as sensational as both.
0: No, I so yeah.
2: It seems unlikely.
0: No, but I am coming to that. But whatever the leads are, in fact, from the morning we are sitting here from 7, I think, in the morning, and so we've seen the opening scores, and till now, it was only for a very short while that TMC took the lead, and ever since BJP has been increasing its numbers, leads over TMC, so it. As of now, it seems unlikely that this whole scenario will completely change. Sure. So, but let's see.
2: Let's go back to Shreyashi, who's over there. We've got the line back with her. Is it tense over there right now? BJP workers outside, tell us what's happening.
3: Well, the BJP workers are right here. They are raising slogans, and we did see them celebrating already. And why not? It has been an unprecedented result for them. And we have seen how in 2021 BJP workers were attacked by the Trinamool Congress. So the BJP workers coming out in large numbers right outside the counting station. As for security, there are three layers of security. There are central paramilitary forces. There are Kolkata police senior officials as well as the constables over here, and barricades that have been put up so that no one reaches them to enter the strong room and the counting center, which is just down the lane here in Lord Sinha Road. Interestingly, this also houses the BSF office here as well as the special branch office of the Kolkata police. So it's a highly secured area, but of course, remembering the kind of strong room showdown that Kolkata saw just 4 days ago, the ECI does not want to take any chance. CM security also present. Now the Chief Minister has of course issued the videos on her social media page, but this is the first time that she has come out and gone to the counting center. This is something again, Shiv, that has not happened before here under her tenure. The Chief Minister usually doesn't go to the counting center, her polling agent does. If I can recall correctly, in 2021 for the bi-polls, Firad Hakim had come in on behalf of the Chief Minister along with his daughter to go check on the numbers that were coming out round by round. But this time, the kind of margins and the kind of lead that the BJP has got shows that the Trinamool Congress has a lot to go back and see where they went wrong. But of course, we are waiting for the Chief Minister to come out and then address the media. She is not given up as yet, and that is clear from the body language when she left her residence. She's come to the counting center, and we are going to be expecting her to address the media shortly. Back to you.
2: I think that's important, and we'll be watching out for what Mamata Banerjee has to say. She's been fairly defiant throughout the afternoon, despite the numbers being against her. But I do believe that Mohamed makes an important point that in terms of the pace of the count of the votes, it seems to have gone slow in Bengal along the lines of what Mamata Banerjee said, but I would suggest that these numbers are now absolutely glaringly in favour of the BJP. I don't suppose that there would be a last change or a quick last minute change in this. What we can now bring you is shots of celebration as far as the BJP is concerned. BJP workers feasting on a meal of fish curry and rice, as trends clearly indicate a victory, a landslide one at that, for the party in state assembly elections. Can I suggest that this Jhalmudi business has been overstated? As a Bengali, I can tell you we have far, far better things to eat than Jhalmudi. It's very easy. It's very easy for, and can I use the two words, non-Bengalis, to be associating, you know, Jhalmudi with cuisine in Bengal. I can assure you it's not. If you want snacks, the phuchkar is way superior to Jhalmudi. Leave it over there. We'll come back in half a second.
1: It's a case of march.
2: Sorry, you touched a nerve over there.
1: March ado about nothing.
2: As I said before.
4: Shubhendu da, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने तो क्रांति कर दी. ऐसे स्टेट में आप बीजेपी को ले गए जहां इससे पहले बीजेपी कभी जीती नहीं है.
5: देखिए जनता को बधाई दे रहा हूँ, कंप्लीटली मिस रूल के खिलाफ जनता ने वोट किया और पूरा आप हर ईवीएम में देखिए हिंदू कंसोलिडेशन और 7% स्विंग हुआ। इस बार जितना गाली जितना अत्याचार ममता बनर्जी हिंदू लोग के ऊपर दिया, हिंदू ने मुंह तोड़ जवाब ईवीएम में दे दिया।
4: शुभेंदु दा आप तो खुश होने चाहिए, ऐसे डांस करना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, आप तो इतना सीरियस टाइप का जवाब दे रहे हैं। आपने ऐसा किया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से बीजेपी वाले सोच रहे ड्रीम कर रहे करने की, लेकिन आज तक कभी हो नहीं पाया।
5: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं आम हर कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट किया, हम लोग को जो मैं तो कुछ मेरा छोटा भूमिका था, लेकिन पूरा कार्यकर्ता खास करके 300 बीजेपी कार्यकर्ता आपने बलिदान दिया ना, उसका ये जीत उनका इसका है। 300 बीजेपी कार्यकर्ता बलिदान दिया।
4: आपसे जब मुलाकात हुई, आपका जब इंटरव्यू हुआ, आप 170 बोल रहे थे, अभी तो 200 के पास चल रहा है, आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
5: हाँ धो तो डाला है, तो ये देखिए यह आध्यात्मिक कैपिटल है देश का, ये कल्चरल कैपिटल है देश का बंगाल। इसको ममता बनर्जी जिस तरीके से खत्म किया और इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है। मोदी जी ने खुद कैंपेन का लीड किया है, उन्होंने काफी मेहनत किया है। मैं जनता और मोदी जी को आभार प्रकट करता हूँ।
4: आप नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हो गए वेस्ट बंगाल के, पार्टी ने बहुत हद तक क्लियर कर दिया। हाउ डज इट फील टू बी द चीफ मिनिस्टर?
5: आई एम नॉट पासिंग एनी कॉमेंट, अब मेरा पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मैं अभी पूरा प्रदेश में शांति ठीक रहे, कोई भी टीएमसी जिस तरीके से गुंडागर्दी करता था, जो भी भ्रष्टाचारी है गुंडा है वो जेल में जाएगा कानून के अंदर। लेकिन जितना 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, इस तरीके से कोई काम हम लोग करने नहीं दूंगा।
4: पोल वायलेंस ना हो उसको कैसे इंश्योर करेंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां रहेंगी सर।
5: हम लोग का कंट्रोल है यार, आप लोग मान के चलिए ना, मैं इसमें कोई कम्युनल बात नहीं बता रहा हूँ। हिंदू लोग एरोगेंट नहीं होता।
4: ये कंचन गुप्ता है, आप जानते हैं उनको?
5: कल्चर में एरोगेंसी नहीं है।
4: कंचन गुप्ता आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। शुभेंदु दा, कंचन दा, लेट मी जस्ट ब्रिंग माय लैपटॉप अक्रॉस। शुभेंदु अधिकारी, यस यस।
6: शुभेंदु बाबू
5: नमस्कार। नमस्कार,
6: কেমন আছেন?
5: আমি আছি, আমি গণনা মনিটরিং করছি। আমি এমনি কমফোর্টেবল, গোটা 200 কাছাকাছি সিট যাচ্ছে। আর ভবানীপুরে মুসলিম এলাকা কাউন্ট শেষ হয়ে গেছে, মমতা ব্যানার্জি 11,000 মতো লিড নিয়েছে, এবারে আমি কভার করে নেব, হিন্দু এলাকা বাকি আছে।
6: শুভেন্দু বাবু, আমি দেখনে কো জো মিল রাহা হ্যা কি जितने भी बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पर भाजपा इतना शानदार रिजल्ट कर रहा है। इन साउथ 24 परगनास, जहां पर पार्टी की कोई जगह नहीं थी, आपने वहां पर कब्जा कर लिया है। डायमंड हार्बर में कर लिया है, इसकी कोर रीजन क्या है, कोर कारण क्या है?

0: Welcome back. Elections in five key battlegrounds across the country today. Let's take a look at Kerala. The political winds in God's own country have clearly taken a decisive turn. This is one state where the Congress has done well. The United Democratic Front, which the Congress helms, has surged ahead, scripting a powerful comeback in Kerala. This marks the end of the LDF's 10-year rule in the state, and it paves the way for a return of the UDF to power in a state which has frequently seen pendulum. It's either the LDF or the UDF in power, but it's been a while since the UDF has been in power. They've come back now. The LDF, led by Pinarayi Vijayan, has fallen short with the electorate, signalling a clear shift in mood across the state. Celebrations have begun in the Congress-led UDF camp, with sweets being distributed, cadres dancing to music, and senior leaders hugging each other. With the CPM-led government suffering a defeat in Kerala, the left will not have a government anywhere in India for the first time in five decades. Let's take a look at several reactions we have at this stage.
1: To make this happen, sir.
2: I'm happy to say that we have predicted that we may get more than 100 seats. Now we got more than 100 seats.
3: Right.
1: Vijayaraghavan has a question for you.
2: Now we are closing 100 seats. Now yes. We are closing 100 seats. Now it is 103.
3: Okay.
2: That was our prediction.
3: You know, you remember you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest? You said you will come to Kabini.
2: Definitely.
3: Are you going to Delhi now or are you going to Kabini?
2: Definitely, I want to visit Kabini again. No. As I said a few earlier.
3: Will you be the Chief Minister of Kerala? Will you be?
2: That will be decided by the Congress High Command. There is a procedure. You know that there is a procedure. I am not the competent person to say anything about that. Now, we predicted more than 100 seats. We are now reaching more than 100 seats. We are very happy. There was an anti-incumbency against the government, and we said to the people that we have been criticizing the government for a long time. At the same time, we said that we have alternatives. Wherever the government failed, the UDF have alternatives. Now the people believed us that we have alternatives. In the fiscal situation, Kerala is vulnerable, health, education, everywhere, and the brain drain is happening. And we have made a detailed study. We have done a homework for the last 2 years. We have been doing this thing. And we have conducted many conclaves. We interacted with many experts across the world. Then now we have documents in each and every subject. Now we are going to implement. Definitely our UDF government will implement what we promised to the people of Kerala.
1: शुभेंदु दा, बहुत बहुत मुबारक हो. आपने तो क्रांति कर दी. ऐसे स्टेट में आप बीजेपी को ले गए जहां इससे पहले बीजेपी कभी जीती नहीं है.
4: देखिए, जनता को बधाई दे रहा हूं. कंप्लीटली मिसरुल के खिलाफ जनता ने वोट किया और पूरा आप हर ईवीएम में देखिए हिंदू कंसोलिडेशन 7% स्विंग हुआ. इस बार जितना गाली जितना अत्याचार ममता बनर्जी हिंदू लोग के ऊपर दिया, हिंदू ने मुंह तोड़ जवाब ईवीएम में दे दिया.
1: शुभेंदु दा, आप तो खुश होने चाहिए, ऐसे डांस करना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए. आप तो इतना सीरियस टाइप का जवाब दे रहे. आपने ऐसा किया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से बीजेपी वाले सोच रहे, ड्रीम कर रहे करने की, लेकिन आज तक कभी हो नहीं पाया.
4: नहीं, आम हर कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट किया. हम लोग को जो मैं तो कुछ मेरा छोटा भूमिका था, लेकिन पूरा कार्यकर्ता खास करके 300 बीजेपी कार्यकर्ता आपने बलिदान दिया ना, उसका ये जीत उनका इसका है. 300 बीजेपी कार्यकर्ता बलिदान दिया.
1: आपसे जब मुलाकात हुई, आपका जब इंटरव्यू हुआ, आप 170 बोल रहे थे, अभी तो 200 के पास चल रहा है. आपने तो दीदी को एकदम धो डाला.
4: हाँ, धो तो डाला है. तो ये देखिए, यह आध्यात्मिक कैपिटल है देश का, ये कल्चरल कैपिटल है देश का, बंगाल. इसको ममता बनर्जी जिस तरीके से खत्म किया, और इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है। मोदी जी ने खुद कैंपेन का लीड किया है, उन्होंने काफी मेहनत किया है। मैं जनता और मोदी जी को आभार प्रकट करता हूँ।
1: आप नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हो गए वेस्ट बंगाल के, पार्टी ने बहुत हद तक क्लियर कर दिया। हाउ डज इट फील टू बी द चीफ मिनिस्टर?
4: आई एम नॉट पासिंग एनी कॉमेंट। अब मेरा पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मैं अभी पूरा प्रदेश में शांति ठीक रहे, कोई भी टीएमसी जिस तरीके से गुंडागर्दी करता था, जो भी भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, वो जेल में जाएगा कानून के अंदर। लेकिन जितना 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, इस तरीके से कोई काम हम लोग करने नहीं दूंगा।
1: पोल वायलेंस ना हो, उसको कैसे इंश्योर करेंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां रहेंगी सर।
4: हम लोग का कंट्रोल है यार, आप लोग मान के चलिए ना, मैं इसमें कोई कम्युनल बात नहीं बता रहा हूँ। हिंदू लोग एरोगेंट नहीं होता।
1: ये कंचन गुप्ता है, आप जानते हैं उनको?
4: कल्चर में एरोगेंसी नहीं है।
1: कंचन गुप्ता आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। शुभेंदु दा, कंचन दा, लेट मी जस्ट ब्रिंग माय लैपटॉप अक्रॉस। शुभेंदु अधिकारी, यस यस।
5: शुभेंदु बाबू
4: नमस्कार। नमस्कार,
5: কেমন আছেন?
4: আমি আছি, আমি গণনা মনিটরিং করছি।

0: আমি এমনি কমফোর্টেবল গোটা 200 কাছাকাছি সিট যাচ্ছে, আর ভবানীপুরে মুসলিম এলাকা কাউন্ট শেষ হয়ে গেছে, মমতা ব্যানার্জি 11,000 মতো লিড নিয়েছে, এবারে আমি কভার করে নেব, হিন্দু এলাকা বাকি আছে।
1: শুভেন্দু বাবু, আমি দেখনে কো জো মিল রাহা হ্যা কি জিতনে ভি বর্ডার কনস্টিটুয়েন্সিজ হ্যায় वहाँ पर भाजपा इतना शानदार रिजल्ट कर रहा है, इन साउथ 24 परगनास जहाँ पर पार्टी की कोई जगह नहीं थी आपने वहाँ पर कब्जा कर लिया है, डायमंड हार्बर में कर लिया है, इसकी कोर रीजन क्या है, कोर कारण क्या है?
0: इसका एक ही रीजन है, घुसपैठिया। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज किया उसका खिलाफ ही वोट हुआ।
1: मैं एक आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, महिलाओं ने किसको वोट दिया इस बार?
2: The headlines at this hour: the BJP breaches Mamta's fortress, Didi loses Bengal's control after 15 years, the BJP is set to begin a historic term in West Bengal. Prime Minister Modi will visit the BJP national office in Delhi after the Big Bengal win. The Prime Minister will address BJP workers around 7 p.m. We'll be cutting across to that. Massive victory celebrations are planned. Vijay's Tamil Nadu blockbuster. Vijay doing extremely well. They are on the cusp of forming a government. The DMK is a distant second. The ADMK at the third spot in the Tamil Nadu battle. The TVK asserts that they could form the government in Tamil Nadu on the 7th of May. If they get a little bit of support, the Congress says that their lines are open, but the Congress may not have the numbers. The Congress-led UDF has swept Kerala, marking a major comeback after a decade. The Congress has been celebrating the alliance's return to power. The BJP secured another victory, this one in Assam, delivering a thumping win. The Congress has suffered a major setback in the state.

कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उनका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टिकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। साथियों, आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को, भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। साथियों, इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 2500 बैशाख, 9 मई का दिन दूर नहीं है, हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था, एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है।

0: ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की इस चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। साथियों, इन राज्यों में चुनाव और उसके नतीजों की राजनीतिक एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है इनकी टाइमिंग। आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी, तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था। जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे, अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। साथियों, आज पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट का पूरे विश्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पूरे सामर्थ्य से इस संकट का सामना कर रहा है। इस चुनाव परिणाम ने भी दिखाया है कि भारत इस चुनौती में भी एकजुट है, एक मत है, एक लक्ष्य से संकल्पित है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हम निकले हैं। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था तो उसके तीन मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल और कलिंग यानी आज का ओडिशा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया, और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेप के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन तीन सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई। ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशंस था, उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा, वैसे वैसे कांग्रेस जनता का भरोसा खोती चली गई। बीते दशकों में देश ने युवाओं की अनेक पीढ़ियां जोड़ी है, लेकिन कांग्रेस घटती ही चली गई है। कांग्रेस देश की संस्कृति को नहीं समझ पाई, देश की संवेदनाओं को समझ नहीं पाई। कांग्रेस एस्पिरेशंस की राजनीति जानती ही नहीं है। साथियों, बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है, और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है इतना ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। भाजपा परिवार की नहीं, जमीन से जुड़ी राजनीति करती है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट भाजपा से जुड़ता है, इसलिए आज पूरा आदिवासी अंचल बीजेपी को इतना प्रचंड जनादेश दे रहा है, इसलिए देश के मछुआरों का अभूतपूर्व समर्थन बीजेपी के साथ है, इसलिए देश के किसानों की पसंद बीजेपी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है। तमिलनाडु की जनता ने एक नया प्रयोग किया है, मैं यूडीएफ को भी बधाई देता हूं, मैं तमिलनाडु और केरलम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इन राज्यों के विकास के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता की हर उम्मीद और अपेक्षा को अपनी सेवा से पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए को विजयी बनाने के लिए, लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सर झुका करके उनका ऋण स्वीकार करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
1: Okay.

0: ओडिशा का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है।
1: ममता बनर्जी यहाँ आई थी, आरोप लगा रही है कि उनके साथ
0: उन्होंने 15 राउंड तक थी, जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया, और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का लूथ वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ, और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मड़वाड़ी, हमारी पूर्वांचली सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 MLA को प्रणाम करता हूँ, राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए, और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने उनका टीम भी बहुत बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम सामने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था, मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले, बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी बोल दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है, नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना
2: पड़ेगा।
0: नंदीग्राम में मुसलमान बेसी छिलो, मार्जिन कम हो, 66,000 मुसलमान छिलो, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে, এখানে 35,000 মুসলমান ছিল তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোকে হিজাব পরা মমতাকে ভোট
2: দিয়েছে।
0: ভ্রষ্টাচারী
2: দাদা।